क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन

रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए वाह।

कर्म प्रापत होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णो महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास। नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे प्रगास। पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई। तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। जी जंत सब तेरिया तू रहया समाई। जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मोआ आस्था मरे ना जाए। नानक आस्था पूरियां सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा आसा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए। नानक निश्चल को नहीं बाजो हर कै नाए। पौड़ी आपे जगत अपाय उन कर पूरा थाट। आपे सहो आपे बनजारा

पौड़ी। नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा, जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने जान बुझ विचारदा, अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, जिसनु लाए सच तिसे उधारदा, जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा, सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई, जीव दया नित जापिए, नानक साचा नाओ महला पंजवा। सिमरत सिमरत प्रभ अपना,

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम अराधे है विघ्न ना लागे कोई पौड़ी भगतां का बोलिया परवान है दरगाह पवै थाई।

कही ना जाए। गुर समरथ देव गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू कमाव दया सुख पुंच त्याय दया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता हुए ता काहे डरपीऐ जिस मिल जपिया नाओ तिस जियो अर्पिया। आया चित निहाल साहिब बेशुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिस कै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच समाहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर।

मनोपिमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नाद नोत जसमरणे जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सोकृत कृतं पाव पूत भाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज ने।

प्रकार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार रहाव लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो हम तन दियो है तार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मरार देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बलिहारी देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मरारी रहाओ तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिल है जूठारी हम रह जिये होर मुख होर होत है हम कर्महीन कूड़ियारी हमरी मुदर नाम हर स्वामी हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन तुम्हारी देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकती ज्यों बेसवा के करपूत जमत है तिस नाम परयो है त्रकती रहाव जिनकै हृदय नाही हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरक्ती ज्यों नुगुरा बहु बातां जाने ओह हर दरगाह है प्रस्ती जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिन्ना साध जना पग चकती नानक पतत पवित मिल संगत गुर सतगुर पातै सुखती छका एक देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चित लाई है।

मूल करत निमक न बिसरोहिए मोरे ते बिसरत जाई हौ मरत सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कुल हीन नानक हौ आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटाव ज्यो अपनो स्वामी सुख मान ताम है शोभा पाव दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमाव सर्व सुख बड़े

सेवा दर्शन दुख उतारियो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

राम नाम रस माती महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाती सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराती।

रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते

जिस लाड लावै देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझै कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोग सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठ तायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

हर चरणी लागो जिस प्रभ अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विखनाश हैं।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देवगंध।

ताको उपजी छोड़ न कतहूं जाता रहाउ बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजया जिन कीनो सौत बधाता।

काल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंदेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

कितवो तब तुहारी, उन तुम्हार मेरा मन साधारी, सुन गावो गुरबचनारी, बल बल जाऊ साध दरसारी, मन मैं राखो एक असारी, नानक प्रभ मेरे करने हारी, देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ

जो पाए छोड़ ना जाए सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग ना कतहूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माए।

तुहारी, हाथ सुंदर मन मोहन प्यारी, सब हूँ मद निरारी रहाऊ, राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारी।

चरण परियो संत हारी कहो नानक प्रब मिले मनोहर मन शीतल बिगसारी देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गाव है हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया कुल है समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीश पुनः पुनः बलिहारियो।

नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा कर पंजवा।

नाम लिया कत पाइया मन रूचा खोज असंखा अनकत पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंधारी महला पंजवा मैं बहु विद पेठे हो दूजा नाही री को खंड दीप सब पीतर रविया।

चुटकी रे मन चुटकी रे ताकत संग ना चुटकी रे रहा। जो काजर भर मंदर राख्यो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल चुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा ने।

रहाउ। मद माया के भयो बावरु, हर जस नह उच्चरे। कर पर पंच जगत को डहके, अपनो उधर पर है। स्वान पूछ दियो होए ना सूदो, कहो ना कान तरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नवा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीर्थ प्रेत पकार। आद करी को नह राखे, करते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं।

पोयंगल बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया फिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाव इन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइया मेरी जिंदड़िए, अनक ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। गरीब चुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावे राम। हो मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावे राम। नानक भज हर शरणागती मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हों हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यो बालक लग दुध कीरे राम, हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यो चातरक जल बिन तेरे राम।

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर।

गुण गावै हर प्रभ केरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुनह हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिया है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

राम जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए तिस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

लगियो। हर हर नाम अराधे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो। जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईऐ। जिनको बधातै तुरहु लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिव लाईऐ। हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जां संग मिलिया साधे। जन कह नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अरादे। कर जोड़े हो संत इकत्तर होए मेरे लाल जियो।

घर आई, राग बिहागड़ा महला पंजवा, अत प्रीतम मन मोहना, कट सोहना प्राण अधारा राम, सुंदर सोभा लाल गोपाल दयाल की, अपर अपारा राम, गोपाल दयाल गोबिंद लालन,

नानक पयम पै संत जम पै मेल संत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करूं उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना धीजी है खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजी है आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकी है एक तिलै नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले सेज एक प्रियो संग दर्शना पाईए राम अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा दे दे भ्रम भीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए नानक पयम पै संत सरनी मोहे दर्श दिखाइए संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागे तेरा पाना राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन धन तुम मना मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन।

संत प्रसाद तरे पव जल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिल

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, हर पतन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भगै है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जप है, हर नार सुहागणी सब रंग माणी, रांड ना बैसई प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बदभागिया, सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरण आवै तिस कंठ लावै, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

राम तपतमा कतह बुज्ज बिन स्वामी सरनाराम प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी नाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना नानक चातर हर बूंद।

संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मन होना बीसरै आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरै अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको धामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिर तो दुहेली, तू बलवंच लूक कर है, सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाने दुख सहो प्राणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू, आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया, भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे, किरत घन विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापिया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक शरण सम

प्रगट भए सीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट कट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सरपर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाईए, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाईए, हौ हौ करतना तृष्ण बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काज लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर

सुख पाईऐ, होर थै सुख न भाल। गुर कै शब्द मन भेजीऐ, सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिना कौ मिलै, जिन हर वेखै नदर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्श है, जिस बख्शै सो खर्चै खाई। सतगुर बिन हाथ ना आवई, सब थके कर्म कमाई। नानक मनमुख जगत धनहीन है, अगै भुखा के खाई। पौड़ी, सब तेरी तू सब सदा, सब तुद उपाया। सबना विच तू वरतदा, तू सबनी त्याया। तिस दी तू भगत थाए पाए, जो तुद मन पाया। जो हर प्रभ भावे।

चार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखनहारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गात मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसया मेरा स्वामी, तिसनू क्यों अंदेसा किसै गलै दा लोड़ी है। हर सुखदाता सबना गल्ला का, तिसनू त्याई दया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है। जिन हर त्याया तिसनू सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठै। जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ। जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए। जिन हर हर मन वसाया, महला तीजा सारस ना जल जाओ। जिन हर का नाउ वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै। हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत। हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे। जित पावै तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे। हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस। कर वेखै चलत सुभाए,

कहौं बलिहारै जाओ महला तीजा। नानक तरवर एक फल दुए पंखेरू आहे। आवत जात ना दिसहि ना पर पंखी ताहे। बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण। हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान। पौड़ी आपे धरती आपे है राहत। आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै। आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा। आपे चुली भरावै आपे संगत सद बहालै। आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध। ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद। जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

जगत उपाया करते दान सब ना कहो दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अनदिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्ध उर्ध उर्तार अंतर प्रीतम वसिया तुर कर्म लिखिया करतार।

दिन रह सदा गुण गाय बिन कर्म किने ना पायु भौक मोए बिल लाय गुर कै शब्द मन कन भिजे आप वसे मन आय नानक नदरी पाईए आपे लई मलाई पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथ आप भीजे आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजे आप परविरत आप निर्विरती आपे अकथक थीजे आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजे आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा सीखा अंदर हो जोर छाड़ तू पहो कर झल गवाए गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम।

बाणी आपे खंडवर भंड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे आपे भौजल आप है बोहिथा आपे खेवट आप तरे आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाइए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए हों मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाइए सच्चे रह समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होए सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म

आप खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

है पर बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाइय नानका, थादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पीलाए जमकाल, इत मद पीते नानका, बहुते खटी है बेकार, ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार, काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कट है बेकार। पौड़ी, आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरे बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आई पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

पाल। नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौ पाल पौड़ी। आपे 68 तीर्थ करता आप करे इशनान। आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए हे नाम। आप दयाल हुए भौ खंडन आप करै सब दान। जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान। जिस दी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है। अंधे कर्म कमाए शब्द ऐस्यो चेतना लावै। जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिरै। अहनस जलत बिहाए जो तिस भावै सो

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय कीमत किनै ना पाइया कितै ना लिया जाय गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय नानक आप अमेव है गुर किरपा ते रहिया समाय आपे मिलिया मिल रहिया

नानक गुरमुख पाई है जा कौ नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

तृप्त भई हूं तिन बलिहार जाऊं। मैं की नदर ना आव ही वस्त है हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहु रावण गईया हों दादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पत्तियां भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ केहो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने। तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लग तरै संसारा। गुरमुख ज्ञान रथे जोगे अंतर, चूकै मोह गुबारा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहया समाई, नानक मस्तक जिस वडभाग, गुर की बाणी सहज बैराग, वडहंस महला तीजा, पूरे गुर ते नाम पाया जाए।

मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक बेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौ सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा

आप खाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाव लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा कट कट वस है जान है थोरा

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला।

जाओ। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

दाते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता बड़ा हंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे बड़ा हंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरे ना कबहू सीजै, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर किरपा ते प्रभु ते आइय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भय निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना।

तिस बिन रह ना सका। ज्यों चातरक जल को बिल लाता, हों क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण कौ रख लेता, हों भई उडीनी कंत को अमाली। सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिन आगै हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पिर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिन के धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

मन सा सब पूरे, मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली, फिर सर्व रहया पर पूरे, जन नानक हर रंग माणिया अमाली, गुर सतगुर कै लग पैरी, वडहंस महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सच्ची बाणी सच धुन सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाहना, धन पन वड भाग हमारा।

सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जात है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

सच्चा सब आकार, नानक सच्चा मेले ता मिले, आपे लए मिलाए, ज्यों भावे त्यों रखसी, आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा, मनुआ दह दिस धाम दा, ओह कैसे हर गुण गावे, इंद्री व्याप रही अधिकाई, काम क्रोध नित संतावे। वाहु वाहु सहजे गुण रवीजै, राम नाम इस जुग मह दुर्लभ है, गुरमत हर रस पीजै रहाउ। शब्द चीन मन निर्मल होवै, ता हर के गुण गावै, गुरमती आपै आप पछाणै, ता निज कर वासा पावै। ए मन मेरे सदा रंग राते, सदा हर के गुण गाओ, हर निर्मल सदा सुख दाता, मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम भए, हर की सरनाई, पाथर डुबदा काढ लिया, ताकी वडियाई। बिक से अमृत भए, गुरमत बुद्ध पाई, अकोह परमल भए, अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दलंब है, जग में खटिया आए, पूरा भाग सतगुरु मिले, हर नाम त्याए। मनमुख भूले बिख लगे, पहला जन्म गवाया, हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द ना पाया। मुखों हर हर सब को करे, विरले हृदय वसाया, नानक जिनकै हृदय वसिया, मोख मुकत तिन पाया। वडहंस महला पहला शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया कूड़ बगाड़ काहे नाइयै, नाता सो प्रवान सच कमाइयै। जब साच अंदर होए साचा, ताम साचा पाइयै, लिखे बाजों सुरत नाही, बोल बोल गवाइयै। जिथे जाए बहियै भला कहियै, सुरत शब्द लखाइयै, काया कूड़ बगाड़ काहे नाइयै। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ढाहया, सुख मन में आए वसिया,

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई न मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे।

आपे नदर करे बड़ा समहला पहला करहो दया तेरा नाम बखान सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरा मन भावहि माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहि एक मूड़।

एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम ना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हों बलिहारी साचे नावे राज तेरा कब हो ना जावे राजो ता तेरा सदा निहचल एहो कब हो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हों बलिहारी सदा हुआ एक तेरा नावे जुगह जुगंतर भगत तुम्हारी।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम ते आए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई।

साच्य शब्द लिव लाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन ज्ञान रहाय दूजे पाए परम भगुती मन मुख मोही जम काल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरिया अंतर तेरे निदान है बाहर वस्त ना पाल।

गुरमुख नदर निहाल, गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान विहूणे।

वारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

से आखी है और करना किछु ना जाई राम जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम ज्यों किस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसती कोई जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है, दूजे

सकै कोई। जिन सिष्ट साजी सो कर वेखै, तिस जेवड़ अवर ना कोई। मनमुख अंधा तप तप खपै, बिन शब्दै शांत ना आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला, माया मोहे खोआई। एहो जग जलता देख कै, भज पए हर सरनाई। राम अरदास करी गुर पूरे आगै,

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते सेई महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस।

जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नमंग निद पाई, हम मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावे, मेरा सतगुर पूरा राम, हौ मन तन देवा, तिस काट शरीर राम, हौ मन तन काट काट तिस दे, जो सतगुर बचन सुनाए, मेरे मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम तूरा।

आई। किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा, हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख अमृत पीवा। हरे आपे शरदा लाए मलाए, हरे आपे आप सुवारे, हों वारी गुरसिख मीत प्यारे। हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम, हरे आपे मेलै करै सो होई राम। जो हर प्रभ भावै सोई होवै, अवर न करना जाई, बहुत सियाणप लया न जाई, कर थाके सब चतुराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिन अवर ना कोई। हरे आपे पुरख निरंजन सोई। बड़ा हंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बनासे। सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास ग्रासे। जिनको हर प्रभ कृपा सारी, ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया।

0: है मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।
1: जिते पुत कलत्तर कोई बेली नाही,
0: तिते हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन जिन्नी दर्शन, सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन निफल जन्म, सब बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर चूरे।
0: कर हुंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका

सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी अरादया तिनके दुख पाप नवारी सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारी हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा
जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम बखाणिया हर राम नाम सलाहे हर प्रभ हर भगत हर जन मंगी।

हर मिले हर गुण सुख घने, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाण नाम जान, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी

आए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमती मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन जिन्नी दसंदो मा पेरी संत जिन्नी हर प्रभ डिठा तिन कुरबाणे राम से साची दरगाह पाणे राम ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी चंत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए कह सुन सहज समाद लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलह खटाना।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन्हीं लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन कर

हारेवा रोवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारु ज्यो बाजी गर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारु आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखे नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

घर काऊ जमन मरण वड्डा विछोड़ा बिनसै जग सबाई लब तंदे माया जगत पुलाया काल खड़ा रू आई। बाबा आवहु भाई हो गल मिलह मिल मिल देह असीसा है बाबा सचड़ा मेल ना चुकई प्रीतम किया देह असीसा है असीसा देव हो भगत करेव हो मिलिया का क्या मेलो एक भूले नाम हो थे हो थाम हो गुर शब्दी सच खेलो जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाना जुग जुग साचै वेसे साजन सहन मिलो संजोगी।

प्रेम समाय जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप उपायन आवन जान संसारा माया मोह खुआयन।

गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी। फिर जग जीवन किसनो रोइया रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी। सो फिर सच्चा सत ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए। आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए। सो फिर

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे है हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कार्ज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ है सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हऊ मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो संतो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसया।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भौ छोड़िया मन हठ काम ना आवे रास जमपुर बद्दे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवहो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाय विसपे कह थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रत्ते तिना सूजी पई दूजे भरम भलाय पया किरत कमावना कहना कछू ना जाए नानक ज्योतिष भाव है।

ना हो गई। अचिंत वत्सै मने आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय। मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय। सज्जन मिले सज्जना, सच्चै शब्द सुपहाय। घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय। पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गवाय। नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी। तित जाए बहु सत संगति, जित हर का हर नाम बिलोई। सहजे ही हर नाम ले हो, हर तत् ना खोई। नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई। तिस गुर को सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

वर्मी मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुरु दाता सेवी है शब्द वसै मन आए मन तन शीतल शांत होए कृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे पाए प्यार अणहुंदा आप गणाएंदे, जम मार करे तिन खुआर, नानक किसनों आखी है, जाय आपे बख्शन हार पौड़ी।

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिले है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुरे अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा रतना पारख जो होए सो रतना करे विचार। रतना सार ना जाने अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार। मूर्ख आप गणाएंदे मर जम है होए खुआर। नानक रतना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उच्चरै हर नामो नित व्यवहार। कृपा करे जे अपनी ता हर रखा उरतार। महला तीजा।

साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवै नाम मन वसै विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडे।

तिन्नी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायर रूप है बिन नावे लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाए। नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनों सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना होवे हूं मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसै मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए नानक पूरे कर।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर हो है विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखियास पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज

गई। हर का नाम गुरमुख किन विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखित पई। श्लोक महला तीजा, जगत अज्ञानी अंध है, दूजे भाई कर्म कमाए, दूजे भाई जेते कर्म करे, दुख लगे तन धाए, गुर प्रसादी सुख उपजे, जा गुर का शब्द कमाए, सच्ची बाणी कर्म करे, अन दिन नाम त्याए, नानक जित आपे लाए तित लगे, पहना किसु ना जाए महला तीजा। हम घर नाम खजाना सदा है, भगत परे भंडारा, सतगुर दाता जी का सद जीवे देवनहारा, अन दिन कीर्तन सदा करह, गुर कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्चर है, जुग जुग वर्तावन हारा, एहो मनुआ सदा सुख वस्त है, सहजे करे वापारा, अंतर गुर ज्ञान हर रतन है, मुक्त करावन हारा, नानक जिसनो नदर करे सो पाए, सो हुए दर सचियारा पौड़ी, तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरणी जाए पया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाण गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हथ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए, मन हथ भेख कर भरम दे,

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिने विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना

0: उड़े मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके,
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

ना मन्नियन मार कड्डो होवे पीर। चौथ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागट देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझे कोई रहाओ हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस्त सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदिया कर धावनी ता को आखे धन नानक वेखे नदर कर चढ़ै चवगन वन। सोठ महला पहला चौतुके।

पत्थर लीजै सूठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते।

सर अपसर की सार ना जाने फिर कीच बड़ाही जीओ अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नाव हो काही जीओ निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जीओ पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो सच गुर बचनी फल पाही जीओ ज्यो भावै त्यों राखो हो हर जीओ जन नानक शब्द सलाही जीओ सोठ महला पहला पंच पदे अपना घर मूसत राख ना साक है की पर घर जोहन लागा घर दर राख है जे रस चाख है जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कमन मत लागा नाम विसार अन रस लोभाने फिर पछताहे अभागा रहाव आवत को हरख जात को रोवह एह दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग पगावै गुरमुख सो अनरागा हर रस ऊपर अवर क्या कही है जिन पिया सो त्रिपतागा माया मोहित जिन एहो रस खोया।

तो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो, घट घट जोत समोई जियो, चल तो ठाक रखो हो घर अपने, गुर मिले एह मत होई जियो, देख अदृष्ट रहो बिस्मादी, दुख बिसरै सुख होई जियो, पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए, निज करवासा होई जियो, जन्म मरण भव भंजन गाइए।

मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभै तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मन मुख मत ना

अंत गए पछताई। सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौं लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोय ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाण। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसे मन अंतर। विचों आप गवाईए, सोठ महला तीजा चौथुके। सच्ची

आई अपनी नदर करे पात राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हिरदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठाई हिरदय नाम अपारा जुग जुग पाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जाग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवे सो मग पजाने हर रस रसन रसाई जप तप संयम सब गुरते होवे हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई पल्ले किशु ना पाए गुर मिले नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईए पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाय रहाउ नामै ते सब उपजे पाई नाए विसरै मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजन पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदै रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए सतगुर सेव है ता सुख पावे है नाही ता जाहेगा जन्म गवाए रहाउ त्रै गुण धात बहु कर्म कमावे है हर रस साधना।

रे मर जा। आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंघा, आपे सागर बोहे था प्यारा। गुर केवट आप चला, आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा। कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा। जन नानक बख्श मला, सोरठ महला चौथा। चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए। आपे सूत आपे बहुमणिया,

आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर

हर गुण गावे है, हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, कृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरे तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़े आई।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी। तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाए, जन नानक अवर ना कोई। चौथ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किस हौ जाति किस आरादी, जा सब को कीता होसी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी। निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी। हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई। क्या किसका मोहताजा रहा, जिन हर त्याया सब किस तिसका। तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई। आनंद भया सुख सहज समाणी।

अल्लाह सब किश कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला सोरठ महला पंजवा घर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिय पाई मन तन हिरदय तार साचा साहिब मन वसै भाई एहा करनी सार जित तन नाम ना उपजै भाई से तन होए शार साध संगत को वारिया भाई जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना भाई जिसते सब किश होए गुरपूरै जानाया भाई इस बिन अवर ना कोय रहाव नाम मिहूणे पच मोए भाई गणत ना जाए गणी बिन सच सोच ना पाईऐ भाई साचा अगम धणी आवण जाण ना चुकई भाई झूठी दुनी मणि गुरमुख कोट उधारदा पाई दे नावै एक कणी सिमरत सात सोधिया भाई बिन सतगुर भरम ना जाए अनक कर्म कर थाकिया भाई फिर बंधन पाई चारे कुंडा सोधिया भाई बिन सतगुर ना ही जाए वडभागी गुर पाया भाई हर हर नाम त्याय सच सदा है निर्मला पहाई निर्मल साचे सोए नदर करे जिस अपनी पहाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाई पहाई बिरला कोई कोय नानक रत्ता सच नाम पहाई सुन मन तन निर्मल होए सोठ महला पंजवा दो तुके जौ लो पाओ अपाओ इह मानै तौलो मिलन दुराई।

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जाको तुदे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटेओ अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भय दयाला, ता को मन ते बिसर ना जाई। सोट महला पंजवा, सगल समग्री मोहे।

आद शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्ब थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई।

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम इह हवाला।

संतन सिंह हमला खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर सिंह मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

सुख नहीं पाइए। हो होरेन तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाइए। काल ना भाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

या आंद मंगल विश्रामा मन बाँचत फल मिले अचिंता पूर्ण हो कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ पए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवरदा।

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी, कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अविनासी, तां को बिघन ना को लागे, जो सतगुर अपने राखी, चरण कमल बसे हृदय अंतर, अमृत हर रस चाखी, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच पुजाई, नानक दास तां कै बलिहार है, जिन पूर्ण पैज रखाई, सूरत महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है, देवना हार ना जाने, जियो पिंड साज जिन रचिया, बाले अपनो कर माने, मन मूड़े देख रहे प्रभ स्वामी, जो किछ कर है सोई सोई जाने, रह न कछु शानी रहाओ, जिहवा स्वाद लोभ मद मातु, उपजे अनक बेकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हऊ मैं बंधन के पारा, देह कवाड़ अनक पड़दे मह, परदारा संग फाकै, चित्तर गुपत जब लेखा मांगै, तब कौन पड़ता तेरा ढाकै, दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन, तुम बिन ओट ना काई, काड लेहो संसार सागर बह, नानक प्रभ सरनाई, सूरत महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपुरे की बाणी, जप आनंद करहो नित प्राणी, हर साचा सिमरहो पाई, साध संग सदा सुख पाई है,

थीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी धारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माधो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहयो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाओ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल

गुर पूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरठ महला पंजवां, जाकै सिमरन सब कछ पाई है, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु, पूर्ण होवै काला रहाउ, सार समालै नित प्रतपालै, प्रेम सहत गल लावै, कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै, सूरठ महला पंजवा, अबनासी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन कहो बर्तन, बिरला पावै कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी सरन पया सुख पाई है, बहुड़ दुख ना होई रहाओ, वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की धूर नानक दास बांचै, जिन हर नाम हृदय परोई, सूरठ महला पंजवां, जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम बीचारै, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा रहाउ, समरथ पुरख पूर्ण बेधाते, आपे करनै हारा, अपना दास हर आप उभारिया, नानक नाम अधारा, सूरठ महला पंजवां, अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो।

यो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुरबान सोठ महला पंजवां दुरत गवाया हर प्रभ आपी सब संसार उभारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा सहारी अपना बिरद संभारिया कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावहु मन तन देह सुखाली रहाउ पतत उदाहरण सतगुर मेरा मोहे किसका परवासा बख्श लए सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा सूरठ महला पंजवां बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरनी उभरे कार्ज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरै अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करह मेरे प्यारी हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत भाखिया।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया। उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद।

लोच हमारी कर इसनान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है आन दिन सो कृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ भागी पा।

प्रभ अपने जिन पूरे कल राखी जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया सोरठ महला पंजवां साहेब गुनी गहेरा घर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पए दयाला जप आनंद रहो गुर चरना पौ कत नहीं प्रभ सरना रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी रब अब चल नीव सारी बाल धन तकिया तेरा तू भारो ठाकुर मेरा जिन जिन साध

पार ब्रह्म निभाई पूरी, काई बात न रही आयूरी, गुर चरण लाए निस्तारी, हर हर नाम समारी, अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे, मात पिता ज्यों पाला रहाओ, वडभागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मटाया।

कार्य सगल सवारी रहाउ मिन साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब हुए रामदास सरो

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुरपूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जी।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश करना।

कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई। तार अनग्रहो आप प्रभ स्वामी, पात मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संतां तूरी। सोठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारी, प्रभ सबे काज सवारी, हरे अपनी किरपा तारी, प्रभ पूरन पैज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल

ताप गवाया गुर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई रहाओ जो मंग है सो ले वह प्रभ अपने संता देव है हर गोविंद प्रभ राखिया गन नानक साच सुभाखिया।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादेओ हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

का दाता शुभ चितवन दास तुम्हारी राखह पैज दास अपने की कारज आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल दिन तारी।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

ता जो सिवर है किसकी गत हुए उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहो पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

गावह पाई ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सो

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवां प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस

सारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रव सगले तान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रव सरनाए जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहा तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई।

सुगत सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ।

पुरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध संग कब

बिखियन को तावत केहे बिदरू को ताहि रहाव। वेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावे। पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावे। मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक केते हो चिंता मन काटी जब की फांसी। सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे हो कहां गवार अज

सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना होई रहाव। दारा मीत पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे, जब ही निर्तन देखियो नरको संग शाड सब भागे। कहो कहां या मन बौरे को, इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन। जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठहला गयो जन्मे अकारत थोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा।

हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक ली।

बहुत हित जासियों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जासियों ने हो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदियां चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पू।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस मरास रह बैरागी।

क्या कथिए भाई चालो सदार जाय गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक परम पला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ होए अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुरु।

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ भिख माया चित मोहया भाई चतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आकी भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनो गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइय भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूट है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूटे पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आख अपना भाई गुरते बुझै सुजान जो बीते से उबरे भाई शब्द सच्चा निशान ईंदन अदक सके लिए भाई पाव करन चक पाई हिन पल नाम हृदय बसै भाई नानक।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती।

जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सुवारन हारा। उन्ना की रीस करे सो विगुच्चै, जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मन मुख भौंक मोए बिल लाई। आवह जावह ठौर ना पावह, दुख मह दुख समाई। गुरमुख होवै सो अमृत पीवै, सहजे साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े तै वाद बखाने, बिन हार पत गुआई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, भज सूट है गुर सरनाई। जिन

आपे बख्श मलाय, गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुर नेर लाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारी, साचा शब्द विचार, भौजन पार उतारियन भाई, सतगुर बेड़ै चाड़, मनूरै ते कंचन पे भाई, गुर पारस मेल मलाई, आप छोड़ नाउ मन वस्या भाई, ज्योति ज्योत मलाई, हों वारी हों वार न भाई, सतगुरु कहो सत बलिहारे जाओ, नाम निदान जिन दिता भाई, गुरमत सहज समाओ, गुरबिन सहज ना उपजै भाई, पूछ हो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर भाई, विचों आप गवाए, गुरमति भौ उपजै भाई, भौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई भाई, सच नाम आधार, जो सतगुर सेव है अपना भाई, तिनका हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना भाई, कुल भी लई बख्शाए, सच बाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै भाई, तिस बिघन न लागै कोई, चौथ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा भाई, पूरे भाग मलाई, सदा सुख सुहागणी भाई, अन दिन रतिया रंग लाई, हर जी तू आपे रंग चढ़ाई, गावो रंग राते हो भाई, हर सेती रंग लाए रहाओ, गुर की कार कमावनी भाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख ना लगे भाई, हरे आप बसै मन आए, फिर का हुक्म ना जानी भाई, सा कुलखणी कुनार, मन हट कार कमावनी भाई, विणना वै कूड़ियार, से गावह जिन मस्तक भाग है भाई, पाए सच्चै बैराग, अन दिन राते गुण रवह भाई, निरभउ गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा भाई, सो सेव हो दिन रात, सो क्यों मनो वसारी है भाई, जिस दी

भाई मिल प्रीतम साच समाव। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुंह देसी जाय। किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्यानो लो भाई। नाम समाल है सुख वसह भाई सदा।

कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करन कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेवी है भाई।

भाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता भाई कमल होए परगास गुर बचनी सुख उपजै भाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए भाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया भाई पेखै सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समर्थो भाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश तिस भावै ता मेल लय भाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है भाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ भाई मौलिया धरत आकाश गुरपूरै संतोखिया भाई ऐनस लागा भाव रसना राम रवै सदा भाई साचा साध सुआव करनी सुन सुन जीविया भाई निश्चल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवई भाई सो जियड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिबै भाई हाँ तिसकै बल जाओ ओ निर्गुण आरे पालदा भाई देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाम जिस गुर साचा भेटिए भाई पूरा तिस करमाव तिस बिन घड़ी ना जीविए भाई सर्व कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै भाई पेखों सदा हजूर साधु संग मिलाया भाई सर्व रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया जिसनों की तो कर्म आप प्यारी।

हर प्यारे अंतरजामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारे के लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारे जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारे तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारे तिसते उपजिया सोग भोग पुंचाए पुलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चेतना आवे मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत सांगना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोह काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाए जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिन्ना पूरी पाई संजम सहस सियान पा प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलायन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवे प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भवजल पार परे जिस भावे तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पोंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद बादे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विध दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिय हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंडो होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले

हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हों मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफले हो सतगुर।

पुरख सुजान कुल उधारी अपना सूजन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग हर

फुरमाइए कौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोह ठगौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतेओ से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहु अत घना पुत कलत ना साथ कोई जास लोकां विच मोह काला हुआ अंदर उबे सास मन मुखां नू को ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखां नू सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सहन से सजना जे गुरमुख मिलहे सुपाय सतगुर का पाणा अन दिन करहे से सच रहे समाय दूजे पाए लगे सजन ना आखिए है जे अवमान करहे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगीए फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया, तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज बिक संग्रह करत आप खुआया, गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन सीतल होया,

आए। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना, हों तिन बलिहारै जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजै लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, अखट तीरथ नहाए। मन की सार न जाननी, हों मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भउ पया, वडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ, हों मैं शब्द जलाए। सच रत्ते से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले ना पाया, नानक सुख समाए। पौड़ी।

पाहे। नानक नगरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाऊं। ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाव। नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड़ गया। ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया। हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुद मया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पयो। हर भोजन अमृत सार जित खाद मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार। यो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार। ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार। ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल। नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए। आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए। नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई। पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारिया। हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारिया। जिन्नी सुन मन्या हर नाम तिना हों वारिया। गुरमुखियां हर मेल मलावन हारिया। हों बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया। सलोक महला तीजा विण नावे सब परम दे नित जग तोता सहसार। मनमुख कर्म कमावनी हों मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा सहजे जागे सहजे सोवे। गुरमुख अन दिन उस्तत होवे मनमुख भरमे सहसा होवे। अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जागह सवह सुपाए। नानक नाम रतिया बल जाओ। पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या। हर एक त्याव है एक इको हर सत्या। हर इको वरत एक इको उत्पत्या। जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या। गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया। सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाए। बिन जिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवै हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड़ पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर बिबेक कर सो बूझे इहो बिबेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भौ करे अपना आप पछाणे गुर प्रसादी।

लायो अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध ना काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर त्यों रहे समाए पंडित दूजै पाए बरकत ना हो।

नानक गुरमुख मिला बड़े आईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी सलोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है एहरन ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे यों गुरमुख आप निवारी है सब राज श्रिष्ट काली नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखिया सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया गुर सतगुर

पिच्छै सुख नहीं, मर जम्मह वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते क अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कुमार

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

री जन उथारे तपियो सुत्या गई विहाय। सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर नाय पुजियो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कारण कमाय। जगत जलंदा डेठ मैं हम मैं दूजे पाय। नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याय। महला तीजा शब्द रते हम मैं गई सुभावंती नार। फिर कह पाणे सदा चले।

हर जियो तिनका दर्शन ना करहु पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरह कसुद मन ज्यों तरखट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो हो सतगुर दया कर।

नानक बख्श लए प्रभ साचा जे गुर चरनी चित लाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सेब चखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की धूर मस्तक लाया नानक पए पुनीत हर तीर्थ नहाया।

निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत

परत है, या तानकी एह बड़ाई, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया रहा, ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस, जोर जोर धन किया, मरती बार लेहो लेहो करिए, भूत रहन क्यों दिया, देहरी नौ बरी नार संग पई, आगे सजन सोहेला, मरखट लो सब लोग कटंब भयो,

ना जाई। हमरा धर्म गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाउ बाजीगर डंक बजाई,

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जेह बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिए ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो धन पाया, हर भेदत आप मिटाया। क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा, रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजे, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बलो वस पानी, काया मांजस कौन गुना, जो घट पीतर है मलना, रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही,

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उभा करिया।

अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही नेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

लंकप भीखण आप्यो हो सोरठ घर तीजा अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाजै।

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा।

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेकारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलाब जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचार्यो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकस समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिद कर तल ताके हर हर हर ना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाति साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो

बेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मोख द्वारा ऐसा नाम रतन निर्मूलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै।

जाना। जे साथ रखिए बीजर लाए, जा परखिए खोटा हुए जाए। जैसा करे सो तैसा पावे।

काती कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावै जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान सबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मालक होवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रित होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामी तह नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करहें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जक मोती, धूप मल आलो पवन चवरू करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, ऐसी आरती होए, भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत।

तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिं को। होए जाते तेरे नाम वासा, तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहो तन अखुट नान खुटै ना जाए। पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए। गुर कृपा ते हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए। गुर पूरे हर तन परगासिया।

एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख नाही।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

शांत श्रृंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई न पाए, मूलों भुला जन्म गवाए।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रते सुख सहज समाई।

कूड़ को सत तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए।

साचा पावा तनासरी महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहु जुग मह अमृत साची बाणी

क्या है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेख आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही ना जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख।

बहुत अभिमान अहंकार डूबे न पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है जा।

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

ज्ञान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारी गत में तो कह ना सकह प्रभ हम क्यों कर मिलह अभागी हर प्रभ स्वामी कृपा धारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के लिख पाप लह जानी रहा ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी धूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख भुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महला।

अपन पाली गुर सिख मीत चलो हो गुर चाली जो गुर कह सोई भल मानू हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पग राली तनासरी महा।

समझ कीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पये है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सरन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाह हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाऊ।

सद बलिहारे जाओ रहाओ सरनागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवह सब गावह हर हर उत्तम बाणी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तीना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

मरारी ज्यो भावै त्यो राख स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवां दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो।

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई परा।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि तृष्ण ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा।

की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत अमृत संग ना।

दी थी। ऐसी ठगौरी पाए पलावे, मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुर अपनी, जिन ओह चलत दिखाया। गुजी पाहे जलै संसारा, भगत ना व्यापे माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाटे। तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

तनासरी महला पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाओ गोष्ट पई साध कह संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तना

तार बंधन काट ले हो अपने कर कभू न आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आराधी नानक सद कुर्बान राग तना श्री महल।

एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह अनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

जाकी रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटह।

अंग। जन को प्रभे अपने का तान, जो तू करह करावह स्वामी, सा मसलत प्रवान रहाव। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण सरण नानक दास हर, हर संति ए बिद जाति। तनासरी महला पंजवां, सगल मनोरथ प्रभ ते पाए, कंठ लाए गुर राखे, संसार सागर मह जलन ना दीने, किने ना दुत्तर पाखे।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो हरफ द्रब देख कस संग नाही चलना जा कोरे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारे रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारे साध संग जपन संग मन निदान तारे चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवां घर अठवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रख।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नव नित रिद सिद्ध हर, लाग रही जन पाई, संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाय।

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਨੁੱਖ ਡਹਕਾਵੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जा कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे ता का युग मह धर्मा जन

जिस जन कै पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परों रवाल रस रस

कल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा, अपनी उकत खिलावै भोजन, अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

नानके आनंद पए दुख भागे सदा सदा हर जाप नासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख

सब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। नासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

स्वामी कोए न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देव हो। दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा करता रहो, पूजा गह कूप ते काढ लेव हो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दोखा तन शाद पूरे। प्रभ बिना आन ना राखन हारा, नाम सिमराव हो सरन सूरे। पतत उदारना जी जंत तारना, वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवां, हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो। नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटह कमाणी पाप चिराणी। साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह। आस प्यास रमन हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लह। सरल समरथ अकथ अगोचरा, पतत उदारन नाम तेरा। अंतर जामी नानक के स्वामी, सर्भक पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवां घर बारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन किस जन ना व्यापै। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाऊ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परों रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, घर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरसागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रे भवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगत हारी, अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी

दास मह सोई जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह मनुआ।

नै मलाई। आप दिखावे आपे देखे, हाथ ना पतीजे ना बहु भेखे। कड़ भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे। नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भये उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आद जगाद सहज मन धीर। पल पंकज महकोट उधारी।

पूरा नामणु गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वड़े आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

लेखै आपे सुरत बुझाई, नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो, हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच में।

गुर ते पाई तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वडियाई। तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राह बाद वधंदिया जियो। दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिरजनहारा। भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो। बोलहै अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे। पारस परसै पारस होए जा तेरे मन भाणे। अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी। भूख प्यासो आत क्यों दर जाए सा जियो। सतगुर पूछो जाए नाम त्याए सा जियो। सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन।

ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर है सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह लिब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जा।

सत संगत मिला वडभाग ता हर रस आवे जीओ दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीओ माया दुख मोहिया हो मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जीओ सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जीओ प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावे कर किरपा लेहो मलाए महल हर पावे जीओ नासरी महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जीओ अमृत हर का नाम साध संग रावी है जीओ पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक

दिखाई रहाउ बनता सुत देहे गृहे संपत सुखदाई इन में कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज न आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रेण तार मूंड बलाई हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा से करत ठगा।

आए दास बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिट नामो सत्तर दोहे परे अमृत सार बिख को मार कढ़ावो पाछे बहुर ना आवन पावो अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है सीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया मह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाइए कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो एह संजम हर पाइए मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो करंक निस नाद बाल।

आऊ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया बारक को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल गुण चाहे बिरले काहू दीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की।

दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै हौ बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कमने अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधव यह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण वाणी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो हरसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाऊ साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मरारी हर के नाम बिन झूठे सग

ज्योत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पो नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठसठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीट सरी दादी ले लंका गाड़ पपाड़ी ले रावण बाण सलब सल आण तुखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दिया रा।

सतगुर हुए लखावे धन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता रहाउ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाऊ तन तन वडभाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर बांझा।

कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाह, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सतसंग।

व्यवस्था मिल सतसंगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल सत

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझहियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महल्ला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरों पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बेअंत बड दाता, मन गिहीरों पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख ना कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महल्ला पंजवां, लड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, काट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रू

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे मह दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन,

आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूपते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरणी जैत श्री महला पंजवां हर जन सिमरोह हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को भओ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

दहदिस को उठताया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परयो शरणागत अपै दान प्रभ दीजै जैत

ना को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक सरल परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया किस दास प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंदा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौं किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता

आई महामंगल रहस थिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महा।

काड पव जल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाम नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ संत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों निवलाई है अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है सलोक रे मन ता कौ त्याई है सब बिद जा कै हाथ राम नाम तन संची है।

सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी भज सरन स्वामी सुखहगामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत ना।

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एहे करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथिया। किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया। उदम कर है अनेक, हर नाम ना गावही। भरम है जोन असंख, मर जन्म है आवही। पशु पंखी सैल तरवर, गणक कशु ना आवे। बीज बोवस भोग भोग है, किया अपना पावे। रतन जन्म हर अंत जुए, प्रभु आप ना पावही। बिनवंत नानक भरम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही। जोबन गया बतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया। नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया। कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूर्ण, नह निमख मन मह उठिया। बिनवंत नानक कोट कागर, बिनस बार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तर, कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए, अवर कछ ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया।

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटंब जतन करनं, माया अनेक उदम है, हर

ना शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया।

का बसंत स्वर्ग लोक का है। जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है। नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ। नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया,

सदा हजूरिय सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारन जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरे नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करनं हर रमणं संजोग।

कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई। बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हाबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

आद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तोहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना

नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत। तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो। महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पाव।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन भीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रब राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा।

टोडी महला पंजवा हमारे एक है हरी हरी आन अवर सिंहान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायू गुरमुख।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीहु ना होए रहाओ, हौ टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथे, एह बिद नानक हर नैन अलोए, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहलड़ो मूडड़ो ही ओरे।

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तुसा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भये मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया।

निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेओ कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये।

बाल जावन टोडी महला पंजवा माई माया शल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़ा भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी जाको अंत न पारा वारा कर गह काढ लियो जाने अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ना संकट द्वारा नानक सरन

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाव कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हम।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बक बाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए।

बामन के कर रांडी आचै रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आचै पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै लीग सीग हींग गो तेली कै कर तेल आचै

ईश्वर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाऊ जो

हंस तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पव जल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नगर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शिडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाइए हर जप नानक नाम आधारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याई

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किसी

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाउ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होए, तेरे नाम निवे रहे लिवलाए, नानक तिन दर पीछिया पाए, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहु तन माया पाया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों धन सीजै।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

तू है तू होनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

यार बंदे जिस तेरा आधार गुनाह उसके सगले आपू तेरे जान देख है दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

ए मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाओ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

खातियां मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे ना चेतेओ जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदे उरतारिए तिन जम नेड़ ना आवी गुर सिख गुर प्यारी।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौ काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावे मूर्ख अज्ञाना।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

आई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ये जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाए असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल कर

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

लिखिया अमृत हर का नाउ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दरवाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई ताई उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हचे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगै पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाउ आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुनाए।

भोगी हुवै खाए, तपिया हुवै तप करे, तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सनीजै भाई, जे को बह अलाए रहाउ, जैसा बीजै सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अगै पुछ न हुवई, जे सण निशाण जाए, तैसो जैसा कांडिए

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नहाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागे घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुलाव।

मन राम नाम अराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगति उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस माण है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरमत मारी, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

हर हर करह नित कपट कमावह, हिरदा सुध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पा

गुण नाम बिरडाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करी मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रहै दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाउ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जेसो लोचै रंग ना होवै कोई, नजर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाख हो जे पाई, तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हउमै करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

कोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया ना जाई हर तन संकिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटिए होरत है होरत उपाय हर तन किते ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

जिसनो हर सो परसन हुए, सो हर गुणा रवे, सो भगत सो परवान। तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान। रहाउ सो सतगुरु, सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसके पाइए परम निदान। जो दूजै पाए साकत कामना, अर्थ दुर्गंध सरेम दे, सो

मान जो बिन परतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जा।

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम।

त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। सूही महला चौथा। तू करता सब किसे आपे जान है, क्या तुद पह आख सुनाई है। बुरा भला तुद सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है, बुरा भला तुद सब किस सूझे, तुद भावे तिवें बला वह रहाउ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देवह, एक मनमुख धंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख। जेही तू नदर करह तेहा को हुए, बिन नदरी नाही को भेख। तेरी वड्याई तू है जान है, सब तुदनो नित त्याई।

जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाई, ते मुक्त पये जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाई, मेरे राम हर जन अरोग पये, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाउ, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हम मैं कार कमाई, जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी, हर गुरमुख सूजी पाई, हम मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे वेख हर बिगसै।

शब्द श्रेष्ठ सब साजी कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ इकना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करह से रोवै हर की वडियाई हो आख ना साका।

मालत हुई। कहो नानक मेरी परम गत हुई, सूही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होई। तुझ बिन दूजा नाही कोई, जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाइए, साच लगे ता हूं मैं जाइए। जिसनो लाए लए सो लागे, ज्ञान रतन अंतर किस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणे रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभु सदा त्याई। सूही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु।

आवै सास सुहागण अंक समावै गर्भ गहेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहण बेहावै कर्महीन।

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवां, उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बेदही अरो तीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले चागी, हिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह पिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कौ हम बारी रहाऊ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी।

भीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जै, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाईऐ जो

आई, जा कहो बिन सतबार ना काई। इह सुपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाउ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सधारा। ऊचते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बनाहे अपारा।

अमृत कथा सुन करन अधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इसनान सुचारी, कहो नानक एहो तत बीच।

का पांडा, हाथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महा गर्त मह निगरत जाता।

कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बलोद मंगल।

बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समराते अगोचर स्वामी।

रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ। जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता।

दास हर सेती राते, राम रसायण अन दिन माते, बाहा पकर प्रभ आपे काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी, नानक दास हर सरन द्वारी, सूही महला पंजवा, संत प्रसाद निश्चल घर पाया, सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया, गुरु त्याए हर चरण मन चीने, ताते करता असथर कीने रहाउ, गुण गावत अचुत अबनासी, ताते काटी जम की फासी।

सगल कौ फिर लपटाओ। करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

गुण हरिया सर गुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वार खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया।

सरनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महादुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बे

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो हो सागर पार उतरिया जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रिय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल मही अल सोई रहाव। कोट अपराधी संत संग उदर है, जमता कै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ। अंध कूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला। सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई। अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा। नानक दया करी सुख दाता केटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवां जब

हृदय उड़तारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागै।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाव सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई

इहो सी जय पावै प्यारा तैरै वेसी सूही महला पहला कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़ड़िया दिन चार जी हो विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए वडाना मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हम मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ, तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है, मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है, तू कर कर वेखह आप देह सो पाई है, तू देखह थाप उथाप दर बेनाई है, देही होवग खाक पमन उड़ाई है, एहो कित्थे घर औताक महल ना पाई है, देहो दीवी अंध कोर कप महाई है, गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है, गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दी पाई है, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रह नेह काम जे गुरमत पाई है, रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मलाए जे तुद पाई है, सूही महला पहला मनो ना नाम वसार एहन सत्याई है, जो राखह कृपा तार तिवै सुख पाई है, मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ, जह देखो तह नाल गुर दे खालिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए भरम पौ भंजना, जन्मत ही दो

किया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख वे।

दास सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद नामे ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया कीन सनाही आपै गुरमुख।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाई। मनमुख सद ही कूड़ो बोले भिख बीजे भिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मन लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर

तृष्णा यज्ञ बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहिया समाय। हर का नाम सत कर जाने,

कोई अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड भागी जे ओना मिल रहे, अन दिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप धनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए,

ई मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यो केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाव गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होए लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुखे को बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पह आप बचाई दर्शन हर देखन कह ताई कृपा करह ता सतगुर मेलह हर हर नाम त्याई रहाव जे सुख दे ता तुझह अरादी दुख पी तुझह त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि

चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादू जे मार कड़ है पीत आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रह ता कोई किहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहो वरसे पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुए बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक काहुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगे नानक वेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोल है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसे गुर सिख गुर देखन जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर पावे सो थाए पाई रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अघाई नानक का प्रभ पूर रहो है जत कत तत गुसाई राग सूही महला चौथा अष्टपदियां कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिथिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना टुटई।

ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जमै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा, जिन मन बुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है, बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार, तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर दसवां काफी।

लाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए।

गुण सार न जानी भरम पलानी जो गुण बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज ना पाया सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन फिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंतर वै सुहागण अवगण मंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैलै विसे नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम भी वन्या सोहर बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी ना नरह ने केवल रव रहिया तेहो लोई माए नरासी रोए बछुनी बाली बालै हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे कर पेय बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर फिर रावी कर सोहिय बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परधानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाई नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सूही महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी

मिलिया भाई सुभाई, नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आई, घर आयड़ी साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम, गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रात, अवगुण मार गुणी घर छाया, पूरे पुरख बधाते तस्कर मार वसी पंचायन, अदल करे विचारी नानक राम नाम निस्तारा, गुरमत मिलह प्यारे वार पायड़ा बालड़िए, आसा मनसा पूरी राम, फिर रावे अड़ी शब्द रली राव रहया नह दूरी राम, प्रभ दूर ना होई घट घट सोई, तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे, ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है माड़ी है, तेहो लोआ सिर ताजा राम, हों विषम पई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम, शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो, पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती, नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

मीता हो बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा का हुए वासला कड वासली जय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुणा केरी छोड़ अवगण चली है पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मली है जिथे जाए बही है भला कही है झोल अमृत पीजे गुणा का हुए वासुला कड वासली जय आप करे किस आखी है होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए।

प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझै सूझै जानी जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूझै गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसै भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्तै मत होशी है क्यों राह पछाण क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो धंधली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दसै मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

झूणे ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुरमहली घर अपने सो भरपुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला तां सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना कीता क्या साला ही है।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुल्य, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोहिलड़ा हर त्यार।

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आई, दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याई।

जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोले जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना

रावे मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए हर वर पाव है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझे कोई। हों मैं मार पछाणिया करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती कामन सच समाई। हर सुख दाता

गुरमति घट चानण होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हउमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहो अनदिन शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए हर गुण गावो नारी अनदिन भगत करह गुर आगे सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसया घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहिला हर कर किरपा घर आई भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर

जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन घर सद ही सोहिला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम, हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल, गुर कै शब्द शिंगारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, जिने आपे आप उपाया। नानक सदा पिर रावे अपना, जिन गुर चरणी चित लाया। फिर पायड़ा बालड़िए अनदिन सहजे माती राम, गुरमती मन आनंद भया। तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती। मेरा प्रभ मेल मलाए अनदिन रावे हर प्रभ अपना। विचो हो आप गवाए गुरमत पाया सहज मलाया। अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती।

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ, नानक कृपा तारे सोहे लड़ा हर राम नाम, गुर शब्दी विचारे हम नीवी प्रभ अत ऊंचा, क्यों कर मिलिया जाए राम, गुर मेली बहु कृपा तारी, हर कै शब्द सुपाए राम, मिल शब्द सुपाए आप गवाए, रंग स्यो रलिया माणी, सेज सुखाली जा प्रभ पाया, हर हर नाम सुमाणी, नानक सुहागन सावड भागी,

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारू राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारू राम इकना मन आधारू सिरजन हारू वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म बिचारू घट घटे सबना विच एको एको राम पतारू राम गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराए आप गुआए निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी।

पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बल नाम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा कर दूजा, गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाईऐ, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, भये पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निसतारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया। व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे होमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया। बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम सतगुर पाए चलो हो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया बड भागी सच नाम लिव लावै मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर मैं मेले प्रभ गुण तासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम वगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आव हो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यों जल बिन मीन मराहा वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भूख लगाया अनता धन धर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावे पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही संत महला चौथा मारे हिस्वे जन हूं मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वनिया इन हूं मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हूं मैं छुटिया बस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यों नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौदिया जन नानक प्रभ देहो मती साडे आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राजिया हर प्रभ सेजड़ी है आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया कर कृपा लेहो मलाई मेरा मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर सरदा सेज विछाई जन नानक हर प्रभ पाणिया राम राजिया मिलिया सहज सुभाई इकत सेजै हर प्रभु राम राजिया।

अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाइये भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख ताज बहु माणा नानक दीन भगत।

आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित,

मूर्ख नासे, रहस उपजै मन घणा, मन तन निर्मल देख दर्शन, नाम प्रभ का मुख भणा, होए रेण साधु प्रभ आराधु, अपने प्रभ पावा, बिनवंत नानक दया धारहु, सदा हर गुण गावा, गुर मिल सागर तरिया, हर चरण जपत निस तरिया, हर चरण त्याए सब फल पाए, मिटे आमन जाना, पाए भगत सुपाए हर जप, अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई, बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई, पतत पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा, गुरु संत पाया प्रभ त्याया।

वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दास दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक था

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनियह अबनासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपियै दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनियह अवनासी करोड़ हस्त तेरी टहल कमाव है चरण चलह है प्रभ मार्ग राम भव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तारग राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चलै तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए वडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की सरणी करण कारण गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नान

साजिया संत भगत गुण गावह राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावह राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की आत्मीठी कथी अकथ कहानी।

सगली तपत बनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। हर प्रभु फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याइए, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल मही अल सोई, जन नानक प्रभ की सरनाई, तिस बिने अवर ना कोई। मेरा घर बनिया बन ताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम। मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाइया। करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया। सूही महला पंजवा, भय सागर तरिया। हर हर नाम त्याए राम, बोह थड़ा हर चरण अरादे। मिल सतगुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी करिए बहुड़ ना मरिए। चूकै आवन जाना जो किश करे, सोई भल मानो ता मन सहज समाना। दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै, सुख सागर सरनी पाए। हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम। आपनड़ा मन आगे धरिया, सर्बस ठाकुर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदर थित पाई। अणद बनोद सिमरहु प्रब साचा, विछड़ कबहू ना जाई। सावड़ भागन सदा सुहागन, राम नाम गुण चीने। कहो नानक रवह रंग राते, प्रेम महारस पीने। अनद बनोद पए त सकिए, मंगल सदा हमारे राम। आप नड़ै प्रभ आप शिंगारी, शोभावंती नारे राम। सहज सुभाए पए कृपाला, गुण अवगुण ना बीचारिया। कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उर तारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारी। कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारी। गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रविया, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। पेख दर्शन नानक बिगसे, आप लय मलाए। सूही महला पंजवा, अब चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए। करते आप वसाया राम, करते आप वसाया सर्ब सुख पाया। पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर। कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा। आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी। जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे। जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अरादह। कटिए जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभ अवनासी। हर हर नाम त्याए, सगल समग्री पूरन होई। मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख मान है रलिया। दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारी सतगुर पूरे। नानक सद बल जासी,
दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम। आद जगाद भगतन का राखा, सो प्रभ भया दयाला। जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला। दह दिस पूर रहया जस स्वामी, कीमत कहन ना जाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीम रखाई। ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पाव भंजन, अनहद वाजे धुनिए राम। अनहद चुनकारे तत बीचारे, संत गोष्ठ नित होवे। हर नाम अराद है मैल सब काट है, किलविक सगले खोवे। तह जन्म ना मरना आवन जाना, बहुड़ ना पाईए जुनी है। नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद

मैदान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

ना जाने पूर्ण भगवान औगण को ना चितारी पतत पावन हर बिरद सदाई एक तिल नहीं भन्ने काली घट घट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हो बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हों चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे वड़े अवर ना कोई आद अंत मद प्रभ रविया जल कल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पव जल

प्राण अधारू गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बिचारू मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथ।

राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जी हो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हों तिसकी दासी मरे न आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निध स्वामी वड भागी हर हर गाया।

लाल हुआ रसना रती गुण सार, सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार, नानक करमी महल पाया।

मेरा कर्म होए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन।

हुआ। नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी। हउमै माहर मन निर्मला हर नाम पुरधारी, कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी। जिनकी ये तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी, जिस बजाए सो बुझसी सच्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा, कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए, मत से जय कंत।

पव शिंगार कंबोल रस भोजन भाव करे तन मन सौंपे कंत कौ तौ नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन पिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन पिर कहिया सोए। पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगै प्यार सतगुर मिलै पौ उपजै पै पाए रंग सवार। तन मन रत्ता रंग सियो हौ मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार। पौ भाव सब तिसदा सो सच वरतै।

तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातियां दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तूमड़ी अंदर विसनकोर साध भले अनातियां चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावैनू सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

हरि कबह न पावह मान पौड़ी काया कोटर चाहया हर सच्चे आपी एक दूजे भाई खुआयन होमै विच व्यापी यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

अस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतरत।

मद दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए रहाव। काकै करवै रहै ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी। एक ना थाक समाया।

वो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्म बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा।

पटवारी। ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया, इन्हो लिया उभारी रहाओ। नौ डांडी दस मुनसफ धाव है, रैयत बसन ना देही। डोरी पूरी मापह नाही, बहु बिस्टाला लेही। बहत्तर घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई। धर्म राय का दफ्तर सोदिया,

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जान कै अंतर दर्द ना पाई, राहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जानहु त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाउ जिन जियो दिया, सो रिजिक अंबरावै। सब घट भीतर हाट चलावै।

ललत बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावां दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किछ होआ सब किछ तुझते। तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

रहाउ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल मही अल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासी। जो तुद भावै सोई चंगा, एक नानक की अरदासी। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान। आपे सुरता आपे जान,

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, छिन सत गुर बूझ बुझाई रहा, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सियों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी,

दया पथ दाता क्या एह जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मनमुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाउ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरियै बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावै पार। रहाउ पवन चिलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हमें पचे दीपक देख पतंगा। सगल शिंगार करे नहीं पावे, जां होए कृपाल तां गुरु मलावे। हों फिरों उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़ता देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवां, सर्ब कल्याण किए गुरदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाव सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जा का वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवां। सुख नदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुरपार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन्हें आप

जाए पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधिय निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूके जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनसे है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवां विखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकते ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगन अत रूप रस माते इन संग सूख न पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संता संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक तिहाइए। दृष्ट धार मन बेदिया प्यारी रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपह जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मन है उधारो, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मह आपी, हर जप रसना दुख ना व्यापी। रहाउ तिखा भूख बहु तपत व्यापिया, शीतल भये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन तृपताना

हल्ला पंजवां सगल मनोरथ पाई है मीता चरण कमल सिंह लाई है चीता हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत जलन बुझै हर हर गुण गावत रहाउ सफल जन्म होवत बड़ पागी साध संग रामह लिव लागी मत पत धन सुख सहज आनंदा एक निमख न विसरहु परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी भणत नानक सरन प्रभ तेरी बलावल महला पंजवां मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना दया तार अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभ घर मह आया रहाउ भगत वचल पै काट नहारी संसार सागर अब उतरी पारी पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया साध संग प्रगटे नारायण नानक दास सब दुख पलायन बलावल महला पंजवां कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अवनासी अलख अपेवा गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव, सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुरे आणिया, बिलावल महला पंजवां। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साख नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरी, कहो नानक जपह जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवां। कर चौथा दुपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे अधीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव, अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी। कहो नानक जप जीवे ज्ञानी, बिलावल महला पंजवां। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सबन।

आनंद करहू मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता, बंधन बांधिया अत बिकराल। दिन दिन सिजत बकार करत औद, फाही फाता जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागर अत भारी। उधरहु साधु संगर वाला रहाउ, प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी। जियो पिंड सब तुमरा माल, भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर। नानक के प्रभ सदा कृपाल। बलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद सम्हारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाउ। वण तिण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटै सो काल रहाउ, साध संग भजियै गोपाल। गुण गावत टूटै जम जाल, आपे सतगुरे आपे प्रतपाल। नानक जाचै साध रवाल। बलावल महला पंजवां, मन मै सिंचहो हर हर नाम। अन दिन कीर्तन हर गुण गाम, ऐसी प्रीत करहु मन मेरे। आठ पैर प्रभ जानहु नेरे रहाउ, कहो नानक जाके निर्मल भाग। हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवां, रोग गया प्रभ आप गवाया। नींद पई सुख सहज घर आया रहाउ। राज राज

मारै करतार। नानक दास तां की सरनाई, जां को शब्द अखंड अपार। बलावल महला पंजवां, ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाउ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग। गुण गावो नित राम के, एह अवखद जोग। आए बसो घर देश मह, एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बलावल महला पंजवा, काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। ऊट सधारे शत्रपथ, संतन कै ख्याल रहाउ। अहम बुद्ध को बिनसना, एह तुर की ताल। बहु जूनी जन्मह मरह, बिख्या बिकराल। सत वचन साधु कह, नित जपह गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे, हर के रंग लाल। बलावल महला पंजवा, सहज समाद आनंद सुख। पूरे गुरदीन सदा सहाई संग, प्रभ अमृत गुण चीन रहाउ। जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया। जां का अंग दयाल प्रभ, तां के सब दास। सदा सदा वडियाईया, नानक गुर पास। राग बलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यों बालू घर बार, बिन सतबार ना लाग गई। ज्यों कागद बुंदार, सुन मेरी मनसा मने माहे। सत देख बीचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी। ताज गए घर बार रहाउ। जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लग है गावार। कहां सुपाई मीत है, देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बलावल महला पंजवा, लोकन कियां वड़ियाईया। बैसंतर पागों, ज्यों मिले प्यारा अपना। ते बोल करागो, जो प्रभ जियो दयाल हुए। तो भगती लागो, लपट रहे हो मन बासना। गुर मिल एह त्यागो रहाउ। करो बेनती अत घणी, एहो जियो हमागो। अर्थ आन सब वारिया, प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुरते छुटे, दुख अर रागो। हृदय परगास प्रगट भया, निसबासर जागो। सरल सुहागन आया, जिस मस्तक भागो। कहो नानक तिन पाया, तन मन सीत लागो। बलावल महला पंजवा, लाल रंग तिस को लगा। जिसके वड भागा, मैला कदे न होवई। नह लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाईया। मिलिया सुख पाए, सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जानै जिन चाखिया, हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए, क्या कह मुख बोला। सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की, नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवां, रख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवां, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याईए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावै। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझै, बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझै, सतगुर से ओह अपना काहे फिर हो अभागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी, दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवां, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता, महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता, रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता, सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

असर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ इन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियान कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करनापते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बलावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है, तुझ बिन कछ नाही। प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाहि। तुमरी कृपा ते शूती है बिनसै अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाउ खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो तित तित लग है, सियानप सब जाली। जात कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किस तुम ते मांगना बड़ भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै, कल मल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना। रहाव हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल, राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा इस चरणी लाग, माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाउ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखू समान। भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत सिओ मुख जोरे है अद विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे। सब किस तुम ही ते होवा आप बनत बनाई, दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो, संत जना के रेणुका लै माथे लावो। रहाउ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो, पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास नह विसरे अनकत है ना तामो, सफल दर्शन गुर पेटी मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर घर लै आया। रहाउ सरन परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया। बलावल महला पंजवा
माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन में ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आनस्यो सोरलिया खे रहा सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसिए कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दासरा नानक कर ले बलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अनयास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे

सास सास सुमार करनहार जो कर रहे आ, साई वडे आई गुरपूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई। चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंधकूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवां सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

जापै, हर हर हर हर जापी अंतर लिव लाई, के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई, सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथ है हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा, पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत, गुरपूरा जिस भेटिया ताके सुख प्रवेश, मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश। रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार, मन ते कबहु ना विसर सो पुरख अपार, चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लाभ सेव, निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कबो ना विसरे प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा, कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय परमा, थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा, गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर, तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर। रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद, पी अमृत तृपतासिया ताका अचरज स्वाद, आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे, सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे, नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन, नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा, हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ, तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ, कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए, निंदक निंदा कर पके जमकाल ग्रसिए। रहाउ संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एक से आगे बेनती रव्या सब थाई, कथा परातन इओ सुनी भगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी, सत बचन नानक कह प्रगट सब माही, प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही। बलावल महला पंजवा, बंधन काटै सो प्रभु जां कै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ, तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते राखै गोपाल। रहाउ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना, झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुट्टे जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यों तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना। तन तन सरबसे अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवां। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम। कथा कीर्तन हर अत घना।

राए भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सब करह सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवां हर हर हर आराधिय होइय आरोग राम चंद की लष्टका

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

हार राखिया अपनी करमया रहाऊ बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ सरन परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राई।

आवई गुर सिख प्यारी रहाओ। करन कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवां, सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न भए बाछत फल पाओ। बलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती हृद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाऊ। मात पिता बंदब तू है तू सर्व निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाइय सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल भय हर हर नाम कीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा, अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा, मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बलावल महला पंजवा, गुरपुरा आराध्या हुए कृपाल। मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम। सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल भए राखे प्रभ आप। नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बलावल महला पंजवा, तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पए काम। पौ नाठा प्रम मिट गया रव्या नित राम। साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम। साई करी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाव। प्रगट पए संसार मह फिरते पहनाम। नानक तिस शरणागति घट घट सब जान। बलावल महला पंजवा, रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत। वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बलावल महला पंजवा, मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता।
पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता शांत सहज आनंद घना पूर्ण भई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ सुन स्वामी अरदास।

पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन

आप रोग मटाए जिवालियन जा कावड प्रताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहू तले तले सब ऊपर।

नंडौत बंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझ चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई भल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख।

पूर रही दिन सर रात रहाउ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रतना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

सतगुर अपने कौ बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार रहाऊ। कर मस्तक धार बालक रख लीनो,

प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनसेव अंधकार ते मंदर रत्न कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पय उहां संग माते पोत पोत लपटाई।

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा।

सुनो तुम भाई जो कालर भीत गिरी है रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है भलो देख दुख भरी है आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरिय निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया हर जन स्यों बाद उठरी है नानक का राखा आप प्रभ स्वामी क्या मानस बपरे करी है बलावल महला पंजवा ऐसे काहे भूल परे करह करावह मूकर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाव काच बेहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे।

परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा, गुर भेटे काढे बाहा परे। बिलावल महला पंजवां, मन तन रसना हर चीना।

नाम जरा मरा कछु दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फासी साची।

खसम सिर काटिया, हिन मह हुए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक, पुत्र मीत धन किशु ना रहो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक, बलावन महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेवा, आपे आप वरतै स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ, आद मद प्रभ अंत स्वामी, अपना थाट बनायो आप।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचन पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दोवे थाम रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहे आपर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझह चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापी।

खाओ। अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया। मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया। महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया। शरण परे नानक स्वामी की बाहां पकड़ प्रभ काढ लया। बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत। दुश्मन दुष्ट रहे झक मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ। गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार। शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार। जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा। दास अपने को राखन हारा नानक दास सदा है चेरा। बिलावल महला पंजवा गोविंद सिमर हुआ कल्याण। मिटी अपाद भया सुख साचा अंतर।

राखी पै भंजन ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान बलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाउ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जने अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल घर आए।

पंजवां मूला लल स्यों प्रीत बनी रहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है।

विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं दरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर खुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साद मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवां तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जानियो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवां ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्श तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मेरे ही अरे बासै हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो बलावल महला पंजवां ऐसी दीखिया जन स्यों मंगा तुमरो

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतस पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास चा

मन तन रब रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजोआ बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है सरन पाई जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए कहो नानक गुर पूरा भेट्यो आवन जान रहे बलाव महला पंजवां जीवों नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

इस धार लालन मोहे मलावहु कब भरिया वैरी सुनो सहेरी मिलन बात कहूं सगरो अंग मटावहु तो कर ही लालन पावहु कब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु।

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाऊ तीर्थ करै व्रत फुन राखै नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाको।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे, त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

तार गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप खाए हों मेटे, अन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावे। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ, एक गिरहो दस द्वार है जाकी। अहनस तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे। मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया। जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने। गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ ना आवे। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर जस कहते अंत ना लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्स मन तृप्ते। श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने। रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे। तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृष्ट सब सम कर जाने। नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया, राम नाम है ज्योत सबाई। गुरमुख आपे लख लखैया, नानक दीन दयाल भए है। भगत पाए हर नाम समैया, बलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्यावहु, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया। जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, सरल परे से ही जन उबरे। ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ, पार अठारह मह चंदन उत्तम। चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए। मन अभमान बिछड़ दूर गईया, हर गतमित करता आपे जाने। सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे। जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे। सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी। मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया, परम बैराग नित नित हर त्याए। मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए। हर पार न पावे परे परैया, सास्त वेद पुराण पकार है। धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते। लोभ लहर नाव भार बढ़ैया, नाम जपहो नामे गत पावहो। सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हउमे जाए ता निर्मल होवे। गुरमुख परचै परम पद पैया, एहो जग वर्ण रूप सब तेरा। जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह। जित पावै तित राहि चलैया, बलावल महला चौथा। गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हौ बल बल सतगुर सत पुरखैया। राम नाम मेरा प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया। जान की टेक हर नाम टिकैया।

तार बिखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं थाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाप्यान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए पै भंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाहे गह ओट चितवी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण दे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यों मीन जल स्यों हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यों चकवी सूरज आस ना

ज्यों महा खुदयारथ भोग ज्यों बात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हितन संग मैगल है कामै बंद ज्यों ग्रस्त बिख

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

चोटा खाए, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पऊ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ किसे आखा दूर। चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा,

मूठ शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सच हृदय विचार, गुर कै शब्द पावे सब पार, मन साचा मुख साचो पाय, सच निशाने ठाक न पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे, सच नेह केवल कर्म अरादे, पौन पानी अग्नि बिसराउ, तही निरंजन साचो नाउ, किसमें मनुआ रहया लिवलाय, प्रणवत नानक काल न खाय, नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबल।

आत्म चीनै पखंड राच तत् नहीं बीनै निर्मल निराहार ने केवल सूचे साचे ना लागे मल जह देखो तह एको एका हुर जी अपाए वेको वेका फलोहार किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवतूता ऐन सजागह कबह ना सूता जागत जागत।

डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

प्रभ रहे आसमाई। आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार। सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया कल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरखे आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै

काय परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

कह कोई साहिब की सेवक रह सरनाई आपे बख्शे दे वड्याई किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका।

वाई थिति वार सब आवह जाहि गुरु शब्द निश्चल सदा सच समाहि थिति वार ता जहां सच राति बिन नावे सब भरम है काची मन मुख मरह मर बिगति जाहे एक ना चेत है दूजा लुवाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार आप उपाय उपावन हार आपे की तोन गुर विचार बहुते पेख करह पेख तारी पाव पाव ब्रह्म है काची सारी एथ सुख न आगे होए मन मुख मुए अपना जन्म खोए सतगुर सेवे परम चकाई कर ही अंदर सच महल पाई आपे

लिव लाहे हर सिउ रही गोयल, सहज शब्द शिंगारिया, कर जोड़ गुर पह कर बेनंती, मिलो साच प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मो

तिसह भावै सो थीऐ, किरपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जीऐ, मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, पेख पवनी हठ ना जाना, नानका सच गह रहे, पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव धन शब्द जागी, अपने पिर पाणिया, तज कूड़ कपत सुभाऊ दूजा, चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे, साच शब्द निशानिया, कर जोड़ नानक साच मांगै, नदर कर तुद पाणिया, जाग सलो नड़िए, बोलै गुरबाणी राम, जिन सुन मन्ने अड़ी, अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए, रे पवन सोजी सूजे, रह अतीत परंपर राता, साच मन गुण सारिया, ओह पूर रहिया सर्ब ठाई, नानका उर तारिया, महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार रीजै शब्द सीजै, त्रै लोक नाथ पछाणे, मन दीक डोल।

आया मन सुख समान राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम निमाणिया हर मान है हर प्रभ हर आप।

हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम। अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम। हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु साबास है जिन हो मैं मारी राम। जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुर तार।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

वस आओ सखी असि तिरका मंगल गावह तजमान सखी तजमान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

मोनी मोनी महा बचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए तीर्थ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीरे बरत पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक भयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

जियो सुख सागर प्रभ भेटिया नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर प्रभ पाई जब होवे भागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पाओ सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ ताज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उच्चरह बल गईये दोहचारन रसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हों मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिए हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम। बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्याड़े अपने।

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइय मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुगे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चलह सतगुर पाई जिन कै हिरदय हर वसै हों मैं रूप गुआई गुण रवह गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाई इस जुग मह विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेत लाई नानक जिन को नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाय महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाओ हों मैं रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाय नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाई पौड़ी सब वडियाईयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाई है जिस पूर्व हो ऐ लिखिया सो हर गुण गाई सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मलाई सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाई गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाई हर रस पी संतोख हुआ सच वस्या मन आई सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाई सचो दह दिस पसरिया गुर कै सहज सुभाई नानक जिने अंदर सच है से जन शपहना किसे देश पाई महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा कहो नजर करे मानस ते देवते भये सच्ची भगत जिस दे हों मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदय पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई क्या हुआ किसे ही की चख मारी जा सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई सब चख चख।

चित लाई, हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाई, मन मुख ज्ञानी अंदले, जन्म मरह फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी, अंत गया पछताई, जिस कर्म हो तिस सतगुर मिले, सो हर हर नाम

फिट किया है। सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है। सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है। जे हर प्रभ बख्श करे।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाईए अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओए कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै, करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवहो हउ मैं मल जाई, अंदर संसा दुख व्यापे,

0: रहै।
1: इहो मनमुख का विचार हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया। नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर त हट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास लए वे मुख।

इस जोग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत भरम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम मैं शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश हो।

जे हुए कहना किशु न जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी अंतर निर्मल नाउ। अन दिन जागे कदे ना सोवे सहजे अमृत पियाउ। मीठा बोले अमृत बाणी अन दिन हर गुण गाउ। निज कर वासा सदा सुंदे नानक तिन मिलिया सुख पाउ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी सो गुर हर धन हर पासो देवाया। जे किसै किहो दिस आवे तां कोई किहो मंग लए अकै कोई किहो देवाए। इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे तिसका मुंह

आरे सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार नानक अवर ना सुजई हर बिन बख्शन हार महला तीजा हमे माया मोहनी दूजे लगे जाए ना ए मारी ना मरे ना ए हट बकाए गुर कै शब्द पर जालिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर की वड़ी।

का अभिमान जिथे कोह वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवै सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श ले।

मिलत पवित्र पावन होए जावे। यह वडियाई सतगुर नरवैर विच जित मिले है तिसना भूख उतरै। हर शांत तर आवे।

आप न बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर राम रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाई है, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पवजल निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाऊ। बिखै बिखै की बासना, तजी नह जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया,

राम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नाख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां ले उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्ह नवाज साज हम किए तिसै बसार अवर लगरी संदक तुहे साध नहीं कही ओ सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत कल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस।

ऐसा तुही क्या उपमा दीजै बलावल जेहे कुल साद बैसनो होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईसर बिमल बास जानिए जग सोए रहाव ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

केश किसी का हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जोखिन में किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हरि ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा।

आज मरासा जो संसार के कटम मित्र भाई दी सहमन मेरे ते सब अपने स्वाई मलासा जित दिन उनका सुहाओ होए न आवै कित दिन नेड़े को ना टुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुद उपकरे दुख सखासा किसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मंत गुर उपदेश लै जप हो तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो इह छूटन का साचा परवासा गोंड महला चौथा हर सिमरत सदा हुए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना जैसे सकत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना जहां कहां तुझरा कह सब ठाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी किनके चरण मलहो हर दसना शब्द पिशान राम रस पाव हो ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई ओहो कटै ना किसे की कटाई एक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावह मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक कहो हर दान एक दीजै नित बस हृदय हरी मोहे चरना गोंड महला चौथा जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरत जिहा हर कराए तिहा को करै सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लई मेरे मन हर जप हर नित पड़ै हर बिन को मार जवाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़ै रहाउ हर परपंच किया सब करतै विच आपे अपनी जोत तरै हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखइए हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरइए निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पइए जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा धिआइए जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ै गोंड महला चौथा हर

अष्टो करता, ओपत करता, परलो करता, व्यापत करता, लिप्तो करता, भक्तो करता, बूजत करता, आवत करता, जात पी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुरुपद साध नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो संपाए ले, पग धार है सास लेख लै, तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले, अपने रह

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओह मूठो मूड लभाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओह कृपाल दीन दुख भंजन,

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जाके परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जाको है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवां।

मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पौ नसै जा कै कीरत निर्मल सार जा की रेन बांछै संसार कोट पतत जा कै संग उधार एक निरंकार जा कै नाम आधार सर्ब जिया का जानै पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पए कृपाल तब पेटे गुर साध दयाल दिन रैन नानक नाम ते आय सुख सहज आनंद हर नाय गोंड महला पंजवां गुर की मूरत मन मह ध्यान

के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग। गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान। गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा। गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

उनको खसम कीनी ठाक हारी, दास संग ते मार बदारी, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सृष्ट के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार रहाओ, जगत पास्ते लेते दान, गोविंद भगत को करह सलाम, लूट ले साकत पत खोह है, सात जना पग मल मल धोह है, पंच पूत जने एक माए, उत्पुज खेल कर जगत व्याय, तीन गुणा कै संग रच रसी, इनको छोड़ ऊपर जन बसे, कर कृपा जन लिए छड़ाई, जिसके सेतन रखे हटाई, कहो नानक भगत प्रभ सार, बिन भगती सब हुए खुआर, गोंड महला पंजवा, कल कलेश मिटे हर नाई, दुख बिन से सुख की नो ठाऊ, जप जप अमृत नाम अगाई, संत प्रसाद सगल फल पाई, राम जपत जन पार परी, जन्म जन्म के पाप हरि रहाओ, गुर के चरण हृदय उड़तारी, अग्न सागर ते उतरे पारी, जन्म मरण सब मिटी उपाद, प्रभ स्यों लागी सहज समाद, थान थनंतरे को स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, कर

नानक निस्तरीय गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ तज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वडभाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिय।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिय संसार वड भागी पाइये पुरख अपार रहाव जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै।

पाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा।

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां।

अमराव पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाही, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभिमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कहिए। मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झख मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरै नर काम न आवे पशु मरै दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसे तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत न को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड न रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੀ ਇਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦੋਏ ਬਾਟ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨ ਕੋ ਖਾਟ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੱਧ ਪੋਥੀ।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहा भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसे संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वाके अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यो सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तऊ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेतै तन मन रमत रह मह खेतै रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपरे तोई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटै मन कूटै तो जमते छूटै कुट कुट मन कसवट्टी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारह सोदे पांच पलीतह कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात ना करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन कै साद रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग नीका वन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करहे पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खावे है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुजह हर कीर्त नामा अपने राम है भजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस भाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाई प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाउ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी।

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत काड काड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भागहीन मनमुख नहीं लिया, त्रिण ओले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जन नीके, भागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है सेवड भागी, हृदय

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाईए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड भागी तित नवाईए राम मोको हर जन कारे लाईए हौ पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाईए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाईए सतगुर जेवड अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याईए सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाईए एक अपने सवाई आए बह गुर आगे जो बगल समाद लगाईए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाईए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराईए राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग है गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक थिन प्राण ना रह बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है सेल कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उरत।

किया हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवा कर पहला

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत ना आवस दूजी।

आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साखों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

तू सागर हम हंस तुम्हारी, तुम मेहमान कलाला, तुम देव हो तिल संक न मानु, हम पुंच है सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारी, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग अगाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे।

वा तुन अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को निरत कारी पेखे पेखन हार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चंद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे भिन्न भिन्न हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत होऐ दिन राती कट कट वाजै तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत

कोई बाछै पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवां, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदहाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

जानन हारी कहो बल जाऊं। कहो नानक गुर भरम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

रहाउ। रथ में वसया सत का खेड़ा, तृतीय मह किस भया दुतेड़ा, द्वितीया अर्दो अर्ध समाया, एक रहया ता एक दिखाया, एक सूत परोए मणिए, गांठी भिन भिन भिन भिन तनिए, फिरती माला बहो विद पाए, खिंचया सूत ता आई थाए, चहो मह एक मत है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां, खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया, यूं किंकुरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै, रहाउ दूजा राम।

नवारी किस गुर को हो सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन उआ कै सरंजाम रहाउ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

जाग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हुए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बिचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

कुशल सेती घर जाहे पंडित रहाउ। हर का जस निध लिया लाभ, पूर्ण भय मनोरथ साभ। दुख नाथा सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया। नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान। संतोख

सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उधार। रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओह सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, इकत ठौर ओह कहीं ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु ना लहे। इस त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओह तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख। पूर्ण पूर रहया प्रभ।

पर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम गृह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाल है संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग, देही तोये ना उतरे मैल, हों मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, तां का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो ना बिसर गोपाल, तेरे दास की हो आतूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम कली महला पंजवां, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू सम्राट पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा,

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पूता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत न

पूंजी संतन हाथ राखी पूंजी सुन संवाद गुफा तह आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन भगत संग प्रभ गोष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिसे आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

जाऊं। शंकरा नहीं जान पेव खोज तहारे देव, देवियां नहीं जान मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल आप बिछोड़ आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

आप सगल मटाए मन किंडे से फल पाए हो सावधान अपने गुर सियों आसा मनसा पूर्ण होवे पावह सगल निदान गुर सियों रहाओ दूजा नहीं जान कोई सतगुर निरंजन।

गिन दान तां दरगाह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पए दयाल नानक दास निहाल राम कले महला पंजवां होवै सोई पल मान अपना तज अभमान दिन रैन सदा गुण गाओ पूर्ण एही सुआउ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाउ एक की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भव जले उतर है।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहि ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहु कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

जिसका सब कोए किसह अराध सदा सुख होए काहे भ्रम भ्रम है बेगानी नाम बिना किस काम ना आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ जो जो करे सोई मान लेहु बिन माने रल हो वह खेह किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवां, मन माहि जाप भगवंत।

कट आधार वासुदेव बस्त सब ठाए लीला किस लखी ना जाए मेहर दया कर करने हार भगत बंदगी दे सिरजनहार कहो नानक गुर खोए परम एको अल्लाह पार ब्रह्म राम कली महला पंजवा कोट जन्म के बिन से पाप हर हर जपत नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महाविकार तन ते सब नसे।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे किल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

प्रभ पूरे नानक बख्शिंद राम कले महला पंजवां गऊ को चारे सार दूल कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाले अपना प्रभ नजर निहाले।

था, हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्ननवारी सतगुरु देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रगट।

हिंत जाल काल चक्र पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाऊ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करै बिकार जियरे कै ताई, गाफल संग न तसु आ जाई, तरत तोहो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर छाने, जिन दियात सैना चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल, पार ब्रह्म जब पए दयाल, इह मन होवा साध रुवाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचे दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिस त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिन से अभमान, एक त्याई है साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, काट काट रव रहया गुणतास, दर्श दे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितव सच अरदास, राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, गावु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाई, आवागौन मिटै मेरे मीत, रहाओ गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मैं हुए निवास, संत संगत मैं हुए उदार, नानक पवजन उतरस पार, राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल मनासे रोग कूरा रहाओ, एक अरातो साचा सोए, जा की

भसुद गगन एक एकंकार रहाओ हरन धन पुन पुनः करन नह गिरह निरंहारं गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारं तरन टेल गुण अमोल नानक बलिहारं रामकली महला पंजवां रूप रंग सगंध भोग त्याग चले माया शले कनक कामनी रहाओ भंडार दर्भ अर्भ खर्भ।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओटले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड़ भागी ते जन कौ जानो जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम।

ते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कै सिमरै पावै पद निर्वाना पई दयाल कृपाल संत जानू।

बासुर मह निमक एक उर तार है जम को त्रास मिटे नानक तेह अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले छिन छिन औध कट है निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै। सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार, होए परवाना करै तिंगाना। कल लखन विचार रहाउ, कितै देश न आया सुनिए। तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही। महल उसार न बैठा।

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है।

नावहु तोवहु तिलक चढ़ावहु सोचवेन सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाओ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए भस्म चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटै खापर भीख न पाए बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटै निशाना। त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचारै चूक ससोगा। उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग। जत सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत। राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी। सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना। गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ। गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाइए रहाऊ। माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए। नाम रतन निर्मूलक हीरा, तितराता मेरा मन पीरा। हमै ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भउ भागै। जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी। अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई। अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी। पर कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाय। गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परूता। जग सूता मारे आवै जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती।

को जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मेट समानिया राम कली महला पहला साहा गणह न करह विचार साहि उपरे कंकार जिस गुर मिले।

होर कथनी बदो न सगली चार नावह धोवह पूजह सैला बिन हर राते मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचै वाद न बेद बिचारै आप डुबै क्यों पितरा तारै कट कट ब्रह्म चीनै जन कोए सतगुर मिलै तां सोझी होए गणत गणियै सहसा दुख जीयै गुर की शरण पवै सुख थीयै कार्य अपराध शरण हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर शरण ना आईयै ब्रह्म ना पाईयै भरम भलाईयै जन्म मर आईयै जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहाव है दुखदा राते महल ना पाव है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच कै बूझ ज्ञानी सतगुर की टेकै गुरमुख विरली।

दूंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रुवीजै नानक नाम मिलै कृपा प्रभ की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर ना कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर ना कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर

साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पचह अभमान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ भरमस ब्याद ना जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहादो लह सजाई बिन नामे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाव तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जापो गुरमुख हर नाव हौ मैं गर्भ जाए मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत विचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई हैं की नाम वसार है परम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागे नाम बसारियो आवत जावत जन्म गया जां जम ताई केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यों मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

अल्ला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संत हो गुरमुख दे वड्याई रहाउ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिवलागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै घट अंतर सच्चे स्यों लिवलाई सत संगत मह नाम निर्मोलक वड्डे भाग पाया जाई परम ना भूलो सतगुर सेवो मन राखो एक ठाई बिन नावे सब भूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी मह

है भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करहै फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करहै दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावां शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूजै को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचै नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईऐ शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी।

अहंकारी जिच्चर्यंतर सास तिच्चर सेवा कीचै जाए मिलिया राम रारी। आन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी। तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटोह बलिहारी। माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी। आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी। नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी। राम कली महला तीजा।

शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्व थाई राम कली महला पंजवा अष्टपदियां।

हर हर आधारा किन्हीं कुंगर निरत कराई किन्हू वर्तने माला पाई किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बहु चेटक लाए किन्हीं पेख बहु थाट बनाए किन्हीं तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कहावे पंडत को खाट कर्म सहत स्यों मंडत कोई करे अचारस करनी मोहे दीन हर हर हर सरनी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नाम इह माना प्रबोदे कहो नानक जो साध संग पाया बूजी तृष्णा महासीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जिन तू करया माती काले देहरा करया उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ मह जिन तू राखिया राखन हार समार जना सगले छोड़ बेचार मना रहाउ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बंता अरमीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन भोजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन को सिर कीनो मेरा मन तिस ठाकुर

सिज पावै नहीं सीजै कार्ज सबरै मन प्रभति आइजै इहां उहां एकै ओही जत कत देखियै तत तत तोही तिस सेवत मन आलस करै जिस विसरै एक निमख ना सरै हम अपराधी निर्गुण यारे ना किस सेवा ना कर मारे गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवां काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वपारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साध काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम त्याए काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाई संत बिहावै कीर्तन गाए काहू बिहावै दिन रैन चालत काहू बिहावै सो पिड़ मालत काहू बिहावै बाल पढ़ावत संत बिहावै हर जस गावत काहू बिहावै नट नाटक निरते काहू बिहावै जिया एह हिरते काहू बिहावै राज मह डरते संत बिहावै हर जस करते काहू बिहावै मता मसूरत काहू बिहावै सेवा जरूरत काहू बिहावै सोदत जीवत संत बिहावै

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने।

कोट जाने ऊपर नानक वंज वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी, नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो,

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति ज्योत तुम्हारी तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला

साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया।

आनंद सदा गुरते किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

कथयो हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किन ना पाया चतुराई ना पाया किन तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम पलाया माया ता मोहनी तने कीती।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिने अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल नराली, चाला नराली भगतहां केरी, बिखव मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, थन्योह तिखी वालोह निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां, जुग हो जुग नराली।

जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, कर्मी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाई, नह जाई सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाई, सहसै जीव मलीन है, कित संयम धोता जाई, मन तो वोहो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाई, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जुए हारिया,

जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म रत

तेती सन्मुख होवै, होवै ता सन्मुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख।

वरदाता जे अग्न में है आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिभ लावे अपनी लिवे आपे लाई गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जां तिस पाणा तां जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसर मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाई।

मन बन जा रा, हर रास मेरी मन बन जा रा, सतगुर तेरास जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन्ह

प्यास न जाए, प्यास न जाए होत कितै, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाई है।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम महजोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले है।

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आण निवाया। हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया, हथ अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता, मिलन न जाई भरम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा,

सुगड सुजान। सुगड सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणू, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे जीवाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुण।

अखिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चतारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने। देख चलत दयाल सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्याव है पुरख पत परमेश्वरा। सर्व जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाय संतन कै किल वेख सब दुख बनासन। हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै। रैन दिनस अराधी है जोग दान अनेक क्रिया। लग चरण कमल है साधी है भाओ भगत दयाल मोहन। दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर। त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन। भगत गावह गुण तेरे राम अंद मंगल गुर चरणी लागे। पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलया दुख हरिया। कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा। हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै। हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा। पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना। मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो। अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता। सगल दुख निवारनो मोह सोग विकार बिखड़े। जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे। कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै। नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना। अपनी चरणी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरह। एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे भवजल। रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन। प्रभ लगा मीठा पाना सब इच पुन्नी आस पूरी। मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले। फिर नाही दुख वसूरिया राम कली महला पंजवा। संत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है विपत निवारन राम। संत प्रभ विपत निवारनो तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया
एक निमख मनहु ना विसरै, गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै, कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे, नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। शंत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो, भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै, जन्म मरण बेकार छूते, फिर ना लागै दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ अर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। शंत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो, आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा, आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पाव हो। राम कली महला पंजवा, रुति सलोक एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद कर बंदन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुति महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन, जिन्नी एक मन त्याया, सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। सलोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुध भाव सी, नानक नाम आधार। संत सरण साजन परहु, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत। शंत रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो। कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया,
भई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरन तेरी मिति जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जा का वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरनहां दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरी सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर

तनक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर श्रृंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो। श्लोक हर तन पाया सुहागनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगति प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बनी मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धारकंत जियो। श्लोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते टिलना मन ते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरै गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौ आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली महा

वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रि पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

गर्भगली बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखा।

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जाने मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय मीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सो ताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय। गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थिर चीत समाध सुगोनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ करै मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए निसंग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोय। चित है एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यो घर जाय, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जाण। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना। लिखिया किरत तुरे परवाना, सीजै जोबन जरुआ सिरकाल। काया सीजै पई से बाल, जापै आप प्रभु तिहु लोई। जुग

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझे समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरे देखे परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

कंद ग्रंत बिन नावै क्यों छूटी है, जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी, अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है, गुर बिन ज्ञान ना होए, टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग, विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग, तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

फुन आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी घटै न वधै उताहे सेजन उभरे जिन हर पाया

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाहा मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों किन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावह सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दो ही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस्तै मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौं बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणै अपना खूलै बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो ना जाने कोई सृष्टा

बिन साचे नहीं दरगाह मान, हर रस पीवै छुट्टै निधान, हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान, हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान, हार डोर कंकन घणी कर था की सिंगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार, नानक गुरमुख पाईऐ हर स्यो प्रीत प्यार, हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार, हर पढ़ना हर बुझना हर स्यो रखो प्यार,

जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय। बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदय दिता दिखाए, पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरै सहज सुभाए। विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए, मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए। मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए, पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे। नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली, सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार। नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना, जिस राम नाम गलहार। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारु। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ, नानक संत मिले सच पाईए सहज पाए जस लेउ। क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ। कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ। साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ। कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ। नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु। घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई। सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई। आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई। गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाई। दुनिया सागर दुत्तर कहिया क्यों कर पाईए पारू। चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बीचारू। आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै। साच कहो तुम पार गरामी तुझ क्या बैसन दीजै। जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नै साणी। सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम वखाणी। रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासु। अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासु। सुन स्वामी अरदास हमारी।

गुर कै शब्द सो समझ परी, हिंथा झोली भरपुर रहया, नानक तारे एक हरी, साचा साहेब साची नाई, परखै गुर की बात खरी, ऊंदो खप्पर पंच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल, कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, यो तत बिचार है सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिले अंधेरा जाई, नानक हूं मैं मेट समाए, सुन निरंतर दीजे बंद, उड्डे ना हंसा पड़े ना कंद, सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावे साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख नवासी, किस वक्खर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी, गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वक्खर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतरस पारी, चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, चित बिद आसा मनसा खाई, चित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो बीचार, सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राते इहो मन लाया, मन साया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई, त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारन हार, आद को कवन बीचार कथियले, सुन कहां घर वासो, ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो, काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराइए, गुर कै शब्द होमे बिख मारे, ता निज कर होवे वासो, जिन रच रचिया किस शब्द पछाणे, नानक ताका दासु, कहां ते आवे कहां एहो जावे, कहां एहो रह समाई, एस शब्द को जो अर्थावे, तिस गुर तिल ना समाई, क्यों तत्ते अवगत्ते पावे, गुरमुख लगे प्यारू, आपे सुरता आपे करता, कहो

आवै गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाई है।

जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एको सच एका जाणै हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किछ सूझै।

एक माया झूठे आवे ठवर ना पावे, दूजे आवागौन भया आवागौन मिटे गुर शब्दी, आपे परखे बख्श लया।

नानक साच रते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाणै जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यो घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते हो मैं जाए, नाम

त्रि भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान विचार, बिन नावे बोले सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाए, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे, देखो हृदय विचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिव लाए, गुरमुख परखै रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराए, नानक गुरमुख मेल मलाए, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन गुर घाल न पवई थाई, बिन गुर मनुआ अत डुलाई, बिन गुर तृप्त नहीं बेख खाई, बिन गुर बिसियर डसै मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट, जिस गुर मिलै तिस पार उतारै, अवगुण मेटै गुण निस्तारै, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार, गुरमुख कदे ना आवै हार, तन हटड़ी एहो मन बनजारा, नानक सहजे सच वापारा, गुरमुख बांधे ओ सेत बधातै, लंका लूटी दैत संतापै, राम चंद मारियो एह रावण, भेद बपीखण गुरमुख परचायण, गुरमुख शायर पाहन तारी, गुरमुख कोड़ ते तीस उधारी, गुरमुख झूकै आवन जान, गुरमुख दरगाह पावै मान, गुरमुख खोटे खरे पछान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख दरगाह सिफत समाय, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख हमै शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचै रह समाय, गुरमुख साच नाम पाते उत्तम होए।

आपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने पेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रति से कैसी जिस ते उपजे तिस ही जैसी कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाई मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबाते कोई न राखे बिन शब्द नाही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरह तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ताकी कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाय नानक पार परे सच पाय सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसे विचो भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु भव सागर तरिए इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूके अहंकारू अंत

सच सपाखै सच रपै रंग कबहू ना जावे जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठै रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हउमै विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हउमै शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रहै समाई नामे नाम रहै बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामे ते सुख होई नामे ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई।

आपे सब रंग माण साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर है फरमाण मांग है नाम पाए ए भिखिया तेरे दर्शन कौ कुरबाण अविनाशी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोजी होई नानक सब जुग आपे वरतै दूजा अवर नाम।

कोई, राम कसौटी सो सहै, जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानी, हों मैं छड़ै ना कोई, गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई, महला तीजा। जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए, भय का संयम जे करे, दारू भाऊ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईऐ, जा कौ नदर करे पौड़ी, दूजा भाऊ रचायो, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कमावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझ बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले, सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी। रात दिनस उपायन संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए ना आखियन, जिनके चित में भरम, तिस दै दित्तै नानका, तेहो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन पौड़ी। अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआए। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए। महला तीजा राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार।

सो जाए सियाण है, होर पकड़ हिंदू मुसलमान है, सबना का दर लेखा होए, करनी बाज हो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहु चरह, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनों दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले।